तत्काल समरथ है करते। मैं तुझ बिन अवर न कोई, तुझे आपे शिष्ट सिरजिया, आपे कोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सोहोई, जो करे सोहोई, वड्याई गुरमुख दे प्रभ, वड्याई।